0: किसी को बेगाना जाएगा दीवाना सैकड़ों में।
1: यस, महेंद्र कपूर, मुकेश, लता मंगेशकर, हर दिल जो प्यार करेगा। वी गोइंग टू कंटिन्यू विद अ वेरी पॉपुलर वन, वन ऑफ माय फेवरेट फ्रॉम